0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话哦，你不活不下去，我们也活不下去。
2: और चुपचाप निकल भी बाहर गया रहे यहाँ यात्रा है आज हमें सीखना वो सुकुमार समाज दिखा रहे थे इसका
0: हे 氏下的狂歌日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓雾
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 中国这是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛在我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息

0: 春的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: और सुपरस्टार निके व्यवहार गुहार हैं यहाँ या तो दर आज हमें सीधे वो सुपुमस माइक कर सीधे पर
0: 何氏下的狂歌，日夜不息雕琢山河。
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分。
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: और सुपरलाल के विवाह गुहार हैं जो या तुझे आज हमें सीधे वो सुबह मस्माई दिखा रहे हैं उसके लिए
0: 河市下的黄鸽日夜不息雕琢山河
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分
4: 我们现在割草全部收起来牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓墨
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 东螺子是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛在我儿子这一代了也养两代人了
0: 山河不老生生不息